0: बच्चू हमारी को आज्ञा ले लो।
1: तुम्हारी आज्ञा लेनी पड़ेगी।
2: हमारी
0: और का हमारी आज्ञा बिना तो यहाँ से माँ काम ना कर सको।
2: तो कभी तुम्हें ऐसा जरूरत
1: है? अरे सच्ची वो पर